फुंका हा मार्केटिंग तक बुख एफ एम उचित फुंका चाकिन कक बड़क पान्दा सालकामा पान्दन जत्न लामसगो 101.6 मार्केटिंग तखबुखक जो लब मूंग रेसापन खाने हाइपानो नरक लब मूंग रेसापन खाने सिगां दिन टपिक किसा सैकलांगना मार्केटिंग तखबुखक दिन डाक्टर साल बड़ी सामों न बड़ी खाईन बरम रिमानी साल फारिशी अ साल कक सालने दिन सालगामा पानी टपिक डाक्टर रक मतबे बक्सा इंखा डाक्टर मतबे बक्सा मार्केटिंग तक फोन खाने तपक दी तीन टपिक इंखा डाक्टर रक मतबा बक्सा 2326253 नई थाम नई दक नई बा थाम 2326253 और नम्बर कल खाने तपक दी फिबा तबुक गया लब मूंग रेसापुंग उलो फारी तबुक जो खाने लब मूंग रेसापुंग जो लब मूंग रेसापुंग रेसाबाई खाने ननी गोपाल देव बर्मा

0: डॉक्टर रॉक मोटे
1: विपक्षा डॉक्टर तो एक दिन के सांसा जाता है मोटे विपक्षा ना तो बे चिकित्सा द्वारा चिकित्सा दिग्गज और कहाँ पर सरगर्म बन डॉक्टर है बड़े क्या क्या चिकित्सा तो डॉक्टर देखिए ना क्या बोलते तो खड़े मार रहा हूँ तो थी कि ऐसा डॉक्टर नशा कैसा और ठीक चल रहा है व्यवहार वो चिंता ना करने है दा
0: आओ हामियाग्लायनाय बो जेफुर डाक्टर मोनाय जों थाव
1: थाव हामियानि थाम गले
0: ए आपुरु डाक्टरनि कक थायसे थायसे बिन थानि बेलाय नांमानि हेदिबा
1: ए
0: आबो बखा सबाय मानो बखा मुथां मानो बखा बुथार मानो हेदिबा किरिमा हाब्रि मानो एखबा हामरि मानो किरिमा सखमावै के डाक्टरनि कक थायसे थायसे आबो बेलाय नांमानि
1: চিকিৎসা
0: বিজ্ঞান উন্নত ডাক্তার তিনি करी गई बड़ोनी जे एज उनको थांगमानी जे एवरेज एजा अब कमी थी
1: बड़
0: पाई थे बड़ पाई थे बा करोना भाईरास फैका डाक्टर पीपी की चुमी बस कस्ट लगे साल हर थे हेदीबा
1: आबन
0: बगे डाक्टर मतई बक्सा कई बर मारे आंगल हिंदा मारकिजिंग टाखो बुखुक नरक खनाय तंग 101.6 एबा सारासपन डक मेगा हार्जो सालकामा पांदा तिनि टॉपिक खा डाक्टर रो कायतर बे बक्सा हेलो
2: हेलो
0: फुंकहाम
2: फुंकहाम टाखुक न
0: साबसिन खमो बुखु साबसिन खमो हेलो
2: बाबू डॉक्टर खुलम बो डॉक्टर

जराव बेलाइन खाना तो चापू खाना चिंगनी तीन खाने चापू पानी चिंग खूब मेडिसिन देवर मानी खरांग बेलाइन खाना तो चापू खाना तीन अंगे सुबुक नरक खाना तो मानी चापू खानी खाने चापू खाना हमको एस एम एस नाइना एस एम एस हरनेखा आनी मूंखा सदन देवर्मा आनी कमी टक्सा कमी बै आनो नि बागै नो मानिक बिपाशा बै रेचाप जाए ताकुक साधन खाना हिनी कहरका निनी बागै नो ताकुक मानिक देवर्मा तेबुकुक बिपाशारी आंनी खरां बायके रेचाप जाक खाना तो रेचापुंग हमके फायदे जो जराव खाना लाइने बिनी खाना तक मानी रेचापुंग हाइके नरक नरक नि खाना तक मानी रेचापुंग जराव खाना मुचुमी दंग हाइके डाक्टे फार फार गाय सेई रहर दे बो रेचापुंग खाना रेचापुंग नि कक थाय ते साबरी रेचापुंग ते नरक पर तंग तुते चीनी पान्दा खाना तंग अब नबो सेई रहर दे टाइप खाई रहर दे हिंगे जराव और रेचापुंग ताकुक साधन खाना दिनी नि बागै ते जो तो खाना तंगनाय ताकुक बुकु मारे गे चिंग संग नरक खाना दे ओखना तक रेचापुंग सारा चा पॉइंट ऑफ मेगाहर्ट्ज एफएम उजेंतो खानी रेचापुंग पान्दा वो।

खाने रचापंग पांडा नहीं पाए थक रचापंग चंता बुक खाना लाई नहीं के एसएमएस नहीं नहीं शाबता मुसी हर का बाइनो डिबोर का हम आंके हजामारा का मुख छोरानी अनि मुंखे फॉलो देबोर मा हानो गान कैसा खाना रेडी बाई धरामानिक ते बाई विपाशानी गान नि मुंखे तीमा ते तीयुनी थक मुंकरी प्लीज बाई इनके बलाइनो हम बाई इनके ओजराव चंग बुकुक फुलुनी रचापंग खाना तो जाक माने रचापंग खाना लाई नो चीनी तीनी नी खाने रचापंग पांदनो पारी लाई नी गजे बड़ो रोग एस एम एस रहर जाक भी अब जरा करी नी बागे रचापंग खाना नी मान लिया बड़ो नो नाकार सान जाओ ते कुबनी साल रोगो नो रखाई नो एस एम एस खाई फिर दी हाय के नो रोग नी हम जाक माचे नी खातुंग मा पांदा और पांदा नो रोग कोक दुखती क्रिंग हर दी गाय हाब हाय के नो चंग रचापंग खाना लाई नी गजे मान सकांग बचाई तो गुई टोंगो नो रोग नी खाना तो जाक माने रचापंग रोग नो खाना नी बागे इनके फायदी जराव जों बुकुक फुलुनि खनातक जाकमा रचापं खनालाय जिनि दिनिनि खानि रचापं पान्दान जों पारिलायनि तेस्राप सानि यागुलन रखनाय मानाय थुमनु पान्दा पाया सांग जरा खनाय दंदि ते लगि दंदि

0: भागरा दिखाई यंग आज लाय तामनी बुमती सामू नांगी फेमिनी
1: यंग सलाता यंग्रई नरक बेबाग नो साई मामबायो सिंग दपा हांख्राय बदल तामनो तै सामू तांगलाय दं
0: आबु दा कक्सा साइमानु तामो साइमाइनि आंना सा
2: कुबुन यंग आज लाय सा ताबुक्सा जोरासिनि आम जाय रगोले आबो हाय रग गोरै खनाबले
1: गोरै दंमानिनि ता यंग्रई
2: हनकाय
0: तामो सा ताबुखा चिनि आम जायो हापाइखे हायदा
1: हापाइखनता हाइपनो जेंसाद्राबो हंके काहामके साखथारी कासु लाइखेंके किफली तुमी मान लायो
2: केफेक सामा नों खनाबले आजलायसा
1: केफक ब हापाइखा बुनि दफनि बरक बाय करंगमाबो हापाइखा ताबुखसिनि दफावो ओ मुंगनिनो तैनो दायद्र नांलायज
0: आबरक साबरक ताइ साबनि बुसाबति रंबायखा नरक बरं नरमुजे मानबायखेबसा आजलायसा
1: मामै जाङो यंगवारां चिनि दफा हांप्राय बदलनि सामुंसे अबनतै हिंकाबा
2: साबोतै साबुनिबो सारगंबायखो आजलायसा सावि मानानब्लासले
1: मानु ताव मायांनाय आबुन बागैसे मा फायमेने हिंकाबा
0: हाकेबा साबो अंखा किसा सावै खनारैलासा यं आजलाय
1: आबोखे जोंबो किसाफनो वानसगै मायानो तंमानि ड्राग जाना हिंके चिनि यं मुखिनि बुस्ला बकरां मानजाखा
2: तामो आता मखनि बसला बकरां दा
0: बकरां बा ताकलाय सेसिनि लुबिनि माबाय बाक्साकाय मास्टर डिग्री पाइ फेमनि ब्लास ह
1: इयों परिपायद्र बनो सामाब चेंग्रबनु
2: मा अबले कि सापान वान सुगि मालिया
0: दोहायखे बुनि दफानि बरक बाय चाजागै तंग हुनमानि आबगा सामनि बसां खसा
1: तामु नि सानानि यों सलाता यंग्रै
2: सादि सानास नाङै दंखा हंगाबा मा सानानि बुले
1: यंग चलाता यंग्रै कई लुबरी

0: बाबा काइजाक संना बलासा
1: काइजाक नु काइजाक पाई मेडिकलो कसाका नै बसाई परिनानि रहरि रमानि हंता
2: इ हायनु बसाय रग बेलाय के बर काहाम ताई अफिसर कतर हुमला हाके ताबु बरक ताम अंगलाय सिनैसा
1: हायफनो देरे सुखि मानलिया फाराकाति मानलाय खापो
0: ताम बाहाके आबो
1: मेडिकल कलेज परिनाय चिनि जराय रग पालके थांगै काहामके फरायलायै कासुइनारगै मालायका हंता
2: बा खनातक सुखा हाइके चिनी दफा हामग्राय बदलनि ककपिरमानि सामुङो नांमानि कलाय खाता हाय दा हजलाय
0: आव ओ बुरिमानि बुसाय खना खना ब्लासा अ कक्रन न
1: खनाका खनाउइनो उसकांगो कलेज थांगै तुबि फालेकापु
2: बिनि मेडिकल परिमानि खेता मुङनासा
1: मेडिकल हंके ताकलाय न फाइनल रुइ पाइके हनब्ले एग्जाम पाइन अमहाय अंलायमानि ककता
0: साखु अमहाय खाइन जेसनि केबो मुङगो कासुना नांलायनाय
2: दंखा ताबुक फाइदि चिनि सामुंनि कक न सालाय सिवानो हजलाय बकरांनि बुमा बुफा सं दिनि फाइबियानो ब्लासा ताम ह
0: फाइनानि कक न फाइग्रा थों दिनि खै ते खुक नारगलि आंबो आंबा आनि हानक न बकरां बाय मा कायनि बागैसे अमहाय कक र न आवाय खाइदि आबुटा बाइक ग्राफ पेखाक दिखे सप्रना बुसिगे दंबा
2: अबहाय कक र न यागरानि खुनजु बाय खनाके याक्सिनि खुनजु तै लाइरि रहरदि सिनि खाइताय चों खलायु नमा थांलायनाय दहायके आजलाय निनि खे तामो बाहायसा सागरादि
1: आनि आबो ब हजलानि ककनि बज्रनता आंलुब्रिनो काइजगनि गोसरि माया अंगिसे अमहाय ककरनो सनामै साथेपु बति बरकनता बारानि बेकरें सबायै रनानि मुसे तंबा
2: आजलाय निनि कक पाइखादा
1: पायाखु उ मेडिकल परिनन जिकनि कक सालायमा हायनो लुब्रि ब देराले आहनब्ला
0: आबाके तामो बाहायखेंखा
1: बबाय बाक्सा परिनाय चिनि जिराय रक काहामके सालाय बुजिरुवै किफ्लेतुइ मालायखापो
2: बा ककबा हायरोगन खना तक्ता ताबुखे बुमा बुफासं तामुङि तंबाय खानासा
1: तामुङ ना तं ताबुक फाइके खनाबाय सिदिता
0: बकरां बताबुखे फिरोखा बबो तिनि बुमा बुफासं फाइके समाय तांगै ककुबु सासिनि हिनि तंबला
2: फाइबायानो बले बुमा बुफासं
0: फाइनाय तमाखे आजलानि आबरखे कुमुन सखायसिनै जा आनि आबरखे किसा गथुन सपायग्रासिनै जा आता
2: ककग्रै चिनि सामुं न गथुं न कुमुन खायनानि बकरांनि बुमा बुफासं ब दिनिखे मा मुनसिनै जा
1: इकले बकरांनि बुमा बाय बुफासं सपालाय खेब्लास्ला
2: अ हायदि यंसला तै यंग्रै सिं नरंग न नासिङै तंलायो
3: नरक सिं न मतम खायमा कलाय खा हा
4: तामुनि बागले नरक सिं नरंग जाव खबा हा आबोस सागरा दे चाप्रांसा
2: सानाय छानानि हनै न रिमाबा ताम सायांनाय नरंखा तुक तुंया सानि सरक तुंनाय र हजलाय सावै खनार दे
0: यं नर कक बुइसाला नसला बकरां नकनि अंखरमानि सालबसं खाना
4: हाति बासा काति सां खाना ता
3: इ आसुरं नं खना
2: बियां साबनि अर थांनासा
3: बिकिजिं संनि गामियो थांफो
1: हाति बारसारो मै बिकिजिं संनि नग मांगना ओंखाना ताम खाइ तंगिसा
4: सामुंग्रक गेरैता सेबगो इन्याखो हंकायबा उ बिकिं संमाय हान बेरायलाय दंखना ता
3: नरगले तामनि बागै आनि बुसानि ककन आसुकै सिंपिनि किमा दंखाबा बुसाग्न मोजांया परिउइ पाइजाक बिनि बागैले नरक ता मंजाक बायखेबा आस
2: ओंजागु हनै न मा सिंपिनिगु नरगनि मकल नसला हादलै सारि दंमानि नरक साइसि मानिया हंकायबा सिंगि मा नायखाता
4: तामो बमते हादलै सारकाबा जों न नरक आनि बुसाना तै न्याय हाइके कक या कक दासा दिपिया बेजुवा खलायानो
0: यं बेजुवा खे खुसि दंखा
3: तामो बबति बेजुवा ब जोंबो सायमानजाकनो नरक चिनि बुसाना तै तामो खायनानि
4: चिनि बुसानि गाहाम हामियाबा जों बुमावबो फांनाय रक्स नायानो ब्ले नरक सामुं खामाबो हा आं बुसाना तिया एसके सानानि
2: बुसानि बागै बुमा बुफानि जेसे खायदै दङ जों गामि आमजानि बरक ओङैब आसों खायदै दङ आजलाय थांदि बोग्रांनो नाहारि फाइला
3: तामो बन ताबु बरन नहानाबा
2: दंग्रा नाबा नसाला फाइके सिङैनायदि बरनि बाहायखे सखफाय
4: हाय बोग्रां ताबु नंनि अर हायजा
0: इखो फाइखा ताबु नरंनो सिङैनायसिदि बरनि तै बाहायखे सिन अर सखफायखा
3: हाय ओ साजला नों मानि किचिं संनि रसे थानानि हनै जोंनो सालांबोलास
5: नांगिया मा
4: अर खाय नों बुथुबुथाय बाहायखे सखफायखा जाब्ला
5: आमा ते आफा नरगानो नाखरि रिसिदि आं नरं न बेलायखिन ककता थाखिब जाखा
3: तामो बबति ककता त
5: आं नरं न खगै बरक जायनि बेंसनाल गोलोक तिसा ओंखांमानिसि
4: बमति बरक हामियानि

0: नबो आमो हाइखाइनो कासुइ नारगै थिनांगो मुथांना नांलायनाय आबुनि बागै दफा हामक्राय बदलनो पाइफलाय हामबाय हाय नरक टाउननि बागै काबुइ टंलायखासा
1: ओंखा कामना नांया यंगसलाता यंगबुरि छं चिनि तिनिनि असाल मकलि मुक्ति सकना सालिया तिनिनि असाल दफा छिसामा सालसे आं ताबुक बेबाकनि थानि आबुनो कयमुं नारगनाय चेराय एबा सिकला अंखा चिनि दफानि बिसेमा एबा थिनां सिकला जरानि फान्न दफा हामकराय सामुंग फनांदि सिकलानि फान दै थै कुटुं गोथांन एरें एरें बोथाब खायै कसुगुता रहरबायदि नरक बायथांनि मकल तै खुनजु बायन नुखना तै खाना बायखाना बिक्रां लुबरि तै डक्टर जुग संनि कबै कथमा रग्न आरुनि बिसिं नरक चिनि थानानि उसि दायसिनि डाक्टार बरनि कक्रबो खाना बायखा बरकबो जोंबाय बाक्सान कुदि लायै खासि खाब्रं ओंलायि दंलायु अमरके नांनाय दायद्र बेमारनि बागै लामानो खिबिवै लामप्रा ताहिमबायदि केफेकनि बेलगमाव साग्नता सोख्लोगबायदि बुनि दफाव साग्नता फालदि आबुनंथुं चिनि तिनिनि असोमाय
0: बा आबो से कक
2: फायदि जों आता साप्रां सामानि कक न भालखे समाय तांलायनाय
0: आव आव
2: केफेकनि बेलगमाव ताकलायबायदि
1: केफेकनि बेलगमाव ताकलायबायदि
2: बुनि दफाव साग्नता फालदि
1: बुनि दफाव साग्नता फालदि
2: दफा हामक्राय आयुग लगथों
1: दफा हामक्राय आयुग लगथों
2: दफानि थिनां जों सावै दंथों
1: दफानि थिनां जों सावै दंथों
3: आसजोति क्रंजकनाथक नातुनि मुंका दायद्र अनाथक क्रंजका बिनुनिनि बखा नातंनो सैखा रोहित चंद्र देवबर्मा फायताबु खानालायानो रोजामगतल रोजामगतलो सुमित्रा देवरम बैर चापचाक

सँग जराउखना लाइक क्या बेलाइन उखना त तोप रचापुङ ताको गुतम ते बुको कुशादे बर्मनी खरंगो रचाप जाखना त तोप रचापुङ के नाकार्दि तासिगो सामानी हायुं डॉक्टर सालनी पियाबा हायुं या बोसों आयबा नेशनल डॉक्टर्स डे बोसों शाखनायनि रोगनि साल होनै तिनि पालाय जागो जुलाइ तालनि तिनि पुइला साल के ओ सालनो बिसि ब्रुम ब्रुम न तिनि भारत हाक्तर शाक नायनि रोगनि साल होनै बानाय जागौ हदाव बर' रोगनि शाकमा गाहाम खालाय तनि थानिव खरकसा शाक नायनाय शाकथारै सामुं खालायो बर'क गोबांमा सेक्रिफाइस एबा गोबांमा शाकनि दंथकमुं नक नुखुं रग्न जरा रैयावै बर' रोगनि शाकमा गाहाम खालाय तनिनायनि बागै आरो गोबां जरारमानि बागै अ सालनो बालाय जागौ साना थांखा हांखे अ सालनो बालायमानि उग्लग डक्टर बिधान चन्द्र रायनि कतर खालायमु एबा बन मैतु खालायनो अ सालनो बालाय जागौ तामनि हांखे भारत अ जुलाइ तालनि पुइला साल एबा तिनिहाय सालनो भारतनि मुं गोनां डक्टर एबा वेस्ट बेंगलनि आगिनि मन्त्री अक्रा डक्टर बिधान चन्द्र राय आचायमानि ते अ सालनो एबा जुलाइ तालनि पुइला सालनो ब थैमानि साल खुसाइमान 1882 बिसि एबा चिचारा चार जिनै बिसिनि तिनिहाय सालो एबा जुलाइ तालनि पुइला सालो ब आचायखा ते 1962 बिसि एबा जिचुकुरा दक जिनै बिसिव जुलाइ तालनि पुइला साल एबा तिनिहाय सालनो बिनि लांमा ब जखा एबा ब थैजाका बेलायनो अमहाय साल वाना मासिं साबखिनि मानो जे तालबो सेम सालबो सेम आमहाय सालनो आचायो दै थियो अ सालनो मुइतु नारोगनानि एबा बिनि आचायमानि दै थैमानि सालनो मुइतु नारोगैनो बसं साखनायनि रोगनि साल होनै बालाय जागै दङ बिसि ब्रुम ब्रुमनो भारत हापां 1991 बिसिव पुइला डक्टर बिधान चन्द्र रायनो बरम याफारैनो बनो बिनि आचायमाते थैमानि सालनो मुइतु नारोगै मुइतु नारोगनाय हिनै मुइतु ख्लायनो बसं साखनायनि रोगनि साल बालायनायनि बागै साखलायो आफुनि सिमिनो दाबसुक जरा बिसि ब्रुम ब्रुमनो अ जुलाइ तालनि पुइला साल एबा तिनिहाय सालो बसं साखनायनि रोगनि साल होनै बालाय जागै दङ गफायदि हजाराव खोनालायनाय रोजाबुं खोनाथ रोजाबुं नरकनि बागै खोनायदोंदि लगिदोंदि

जों दाल बिदाल पान्दाव रोजाब मुं खानालाय दङ दाल बिदाल रोजाब मुं गग्रबे हिन्दी रोजाब मुं दे सालाय दङ जों दिनै बसंक साखनायनि रगनि साल बालायजागौ दे जों साना थांगा हांखे जे साखनायनि रग बरग नग नुखुंनो आसो गोबां जरारि मानिया साख नायथानि गोबां जरारि बरग सालब्रुमनो बर' रगनि साखमां गाहामखाय दनिनायनि बागै साखथारै सामं खालायो दे बरगनि असामंनो बरम रुनायनि बागैनो दिनैहाय सालो बसं साखनायनि रगनि साल बालायजागै दङ बिसि ब्रुम ब्रुमनो जों बरगनि जे ख्लायमानिनो जों सावै गुलबाया हायदा जों डक्टर रगनो मोथाय हायखे जों नुगौ दामनि हेंखे खरगसा बरगनो साख हामिया ओंनायनो साख हामनायनि बागै जेतेखे बरग साखथार' जेतेखे बरग ख्लायो आब' जों सावै साबाया जों बरगनि अ ख्लायमा बायनो जों बरगनि कक दै जों दंना नांगौ बरगनि कक खोनावै जों दंना नांगौ साखमां गाहामखाय दंनांखाय बेमारनो जों बाया दे बेमारनो हामलिनायनि बागै साखनायनि रग जेतेखे साखथार' आब' गुबैनो बलायजाखनाय बहुनि मानो सावै साबाया बहुनि मानो दे बरग बर' रगनो साखमां गाहामखाय दनि माबे बाक्सा रमदि जों अमाहाय गोबां मा जरा जों जरा मानखा जों थांनाय बिसि गिसानि सिगां साना थांखा हांखाय कर'नानि जरा रगब' जों आफ्रु साखनायनि रगनि जे ख्लायमानि जे सामुं आब' रगनो जों मैथु ख्लायखे हांखाय आजरा रग' बरग बोसोग जरातै साखथारै बर' रगनो नायखा नायखलखा दे अबहाय गोबां मा जिनि हाक्तर' जबारग ओंख्रु रग' एबा पाटिमंकतर ओंख्रु रग' देराकर ओंख्रु रग' बुमा पेखफ्रु रग' अमाहाय मुंसेसो थाय रग' जेसापानाव आगा बिगा पाटिमं रग' दुखु मान्नाय रग्न' दाक्ति दतर' बरग साखनायो जे मानसां बरग साखथारै साखनायो बरगनि साखमांनो गाहामखाय दनिना बागै जायदग' ख्लायो बरगनि अ ख्लायमंनो बरम रोनानि बागैनो असाननो बालायजागौ गेफायदि अजाराव अखोनालायनाय अखोना दतग्रो जाबुं नरगनि बागै

0: 아파 니들 들으 전화 또 당이 동고 꼭두기 아삭 날 샤보던 꼭두고 헬로
1: 디볼까 함 메담
0: 디볼까 함 너나 볼암 속어 시니몽이 간데 사본카
1: 아니 시니몽이 야 우대포르 모하라네 니라수
0: 아 다코 라조 보르 자몽크나 나 샤디
1: 토케 네몽케 딜 핵톰 하라 꼭파이네 꼭파인케 딜 주라레 힐 사마네 오코
0: दिल है तुम्हारा नहीं तो दिल चुरा ले ही नहीं रचा पुंकरी है मातों ले
1: दिल चुरा ले ओहो मेरी शानी इतने मना अबो
0: आ दिल चुरा ले ओबो ओबो निसी दिल का रिश्ता
1: ये आप नो मेरा ना किना तो किने मुखर रोई था का
0: दो दो कोकरे खना रना है खना ही तो दे दो बलाय हम बाय आओ मंगता को राजु रचा पंग खाना नहीं को हर का दिल का रिश्ता नहीं रचा पंग दिल चोरा ले ही नहीं और रचा पंग ना गए खाना लाइने मिनी खाना तो जाक मनी रचा पंग गए खाना दी आ ताको राजु ने निखना तो जाक मनी रचा पंग तो ये जो तो खाना तो नहीं ताको बुकों मारे किचन शो आ नरक वो खाना दी हो खाना तो रचा पंग गए आ नरक नी बागे ते गबांग आसुक चोरा करी क्या गए और रचा पंग ताको खाना लाइने चंग ताको राजु खाना नहीं को हर मनी रचा पंग

मगनी हमजक माचिनी खतुंगा पांडव पाइथक रचक मौचंग तबो खना लाइने मोहब्बत ना करना हो तो केनी टाइटल सॉन्ग ग खना दी ताकु बिमल निखला तो सबने रचक मंग सारा सा पॉइंट रोक मेगा हर साइफे मुजे तबो

गुलनि फेरबाय मेचनै थाइसिदगो काछका पाइथा काइथम थुमुगो नरवे फ्रान्स टाइ मेक्सिको राउन्ड 16 नो क्वालिफाइ इंका राउन्ड अफ 16 नो फ्रान्स पेरागुए बाय टाइ नरवे ब्राजिल बाय थंगाना भारतनि जरा तीन हट दामछको सति थामछियो इंग्ल्यान्ड बाय कंगो प्रजातन्त्र थंगलायना टाइ हरनि दामछ सति थामछियो बेल्जियम बाय सेनेगाल थंगाना त्रिपुरा फुटबल एसोसिएशन नाइकल जागरण थार्ड डिविजन लीग फुटबल बातेमुनि तीन ग्रुप लीग नि पाइथक थुमुंग जम्पुजला प्ले सेन्टर कप्ला इंखा उमाकान्त मिनी स्टेडियम संजाक थुमुंग जम्पुजला प्ले सेन्टर कायबा बुक जा गोल नि फेरबाय साय एस टी सी बडल मेचनखा त्रिपुरा क्रिकेट एसोसिएशन नाइकल जाक हास्टे बेरेमनि सिनियर क्रिकेट नि प्ले पुल नि थुमुंग तीन सिमी चेंजाखा जुराजरा महकुमानि थंखलव चेंमुंनि सालो थुमुं कायथा मुखा आरो दरमनगाव विकेट कायदक बाय आम्बासन कमलपुर विकेट कायदक बाय लंत्रे बेलिन ताइ कांचनपुर विकेट कायथाम बाय गन्दासरान मेचनखा मेला गर श्री सितिनि उत्तर सालका आमचायनि जतन सिलाय कतर रथ जात्रा तेर बुसकां सालचिबानि सिमि चेंजागोन आपन रोगै बानि काचगोन बुसकां सालचिदकनि सिमि साल नैजिथाम जरा मेलागर पुर परिसरनि चेयारपार्सन अनामिका गुस पालरायनि आचुक फांबाय तिनि कक्लाम पान्ना कायछव अकक जाबजाखा मालमाता हामक्राय मन्त्री सुदांशु दासाका मालमाता हामक्राय नायखुं हास्टव तक्तै दुटाय मुइहान मानथग्रिमा बांग्रिना नाहारै कामखे सामुं टाङै दङ तिनि टां न कतर कक्टमा थुमनायरं थुम मन्त्री अकक साका बतायबो साका मालमाता पालायनायरंनि सेफनि बागै आगरतलानि अभयनगर हाफांनि मालमाता साखाम नक ताय आर के नगरनि हाफां भेटेनारी डिस्पेन्सारिनि आउटडुटनि जरा बुटां बांग्रिबै फुं दामचानि सिमि हरनि दामचा जरा खलायजाका नगरतिबानि कक्टमा बुसकां दामनि चिब्रियो सालग्रा एबा दक्षिण गुमटि उनकटिताय दलाय हांकर फेरांककै गोबांहै वाते वाय मानुहिनै हजा क्लायरिका नबरतिबा नायखं खना सालनि तुमारि साखाव थामचिब्रि डिग्री सेल्सियास ताय खामाव नैजिद' डिग्री सेल्सियास गानि गिनिव तंगै मानु तिनि सालनि तुमारि साखाव थामचिब्रि दशमिक नै डिग्री सेल्सियास ताय खामाव नैजिस्नि दशमिक नै डिग्री सेल्सियास पाइथाग कक्टमा बुबाग्र दायस्य परिव मन्त्री बख्रक नरेन्द्र मोदी साखा डिजिटल इन्डियानि चेतन नाइकल मुंग कोटाल लाम तुबुखा बिबिजि रामजि केरं निसाय मिचि बा तिनिसिमे हाखतर गोनाङै सामुग फुनांजाका मन्त्री अक्रा प्रफेसर डाक्टर मानिक साहा साखा आगरतलानि सिमि उदयपुर जरा बसं लाहारन तुंब्रै खलायजागोन हायुं काप फुटबल बाताय मुंग नरवे फ्रान्स टाइम मेक्सिक' राउन्ड 16 क्वालिफाइ ओंखा कक्टमा तीन बागै अरण्य पाइखा उलनि कक्टमा आवाय गान खना फुं दानसिनि सति ब्रैजिव'

0: मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम देश भर में लागू। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें अधिसूचित की। सर्वोच्च न्यायालय ने मोटर दुर्घटना मुआवजे के दावों में एक रूपता लाने के लिए पीड़ितों की आय का आकलन करने संबंधी दिशा निर्देश जारी किए। जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। कल 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगी। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज रात चेस्टर ले स्ट्रीट में खेला जाएगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में राउंड ऑफ 32 में आज रात इंग्लैंड का मुकाबला DR कांगो से होगा। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक के दो बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंड से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है।
1: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कम्प्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। परियोजना से

0: लगभग 7,54,000 प्रत्यक्ष रोजगार और 9,80,000 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के करीब एक्सेस कंट्रोल कानपुर कबरई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इसकी अनुमानित कुल लागत 7,145 करोड़ रुपए है।
1: दूसरा प्रोजेक्ट है बुंदेलखंड क्षेत्र को जोड़ने वाला है उत्तर प्रदेश में। कानपुर से भोपाल का सेक्शन है बीच में, आज जो अप्रूव हुआ है 242 किलोमीटर का, ये कानपुर से कबराई, कानपुर से भोपाल की तरफ जो नेचुरल ट्रैफिक का फ्लो है उस सबको ये कैटर करेगा। 242 किलोमीटर का है ये, एक्सेस कंट्रोल रहेगा कम्प्लीट, एक्सप्रेस वे की तरह का है। 2.5 ईयर्स में कंस्ट्रक्शन करेंगे इसको। कानपुर, हमीरपुर, महोबा, तीन जिले इमीडिएटली इससे कवर होंगे।
0: इस परियोजना से लगभग 1,20,00,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी राम जी अधिनियम आज से लागू हो गया है। अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें भी अधिसूचित कर दी है। एक रिपोर्ट।
2: वीपीजी रामजी योजना के अंतर्गत अब देश में कहीं भी तय की गई प्रतिदिन की मजदूरी 300 रुपए से कम नहीं होगी, जिससे राष्ट्रीय औसत मजदूरी 298.80 रुपए प्रतिदिन से बढ़कर 327.40 रुपए प्रतिदिन हो जाएगी। यह मजदूरी में 10% से ज्यादा की बढ़ोतरी को दिखाता है। इस कानून को पूरे देश में लागू करने के अवसर पर कल आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में वीपीजी रामजी की औपचारिक शुरुआत, लाभार्थियों को ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड का वितरण, वीपीजी रामजी सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म का लॉन्च, अहम प्रकाशनों को जारी करना, लाभार्थियों के साथ बातचीत और कानून को असरदार ढंग से लागू करने के उद्देश्य से कई पहलुओं का उद्घाटन शामिल होगा। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकी परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृह मंत्री को बताया कि वह जनसांख्यिकी परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। गृह मंत्री ने केंद्रीय गृह सचिव को समिति के दैनिक कार्यों और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के दौरों के दौरान हर संभव सहयोग उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मोटर दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एक रूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। स्वरोजगार व्यक्तियों के मामले में न्यायालय ने कहा कि पिछले 3 वर्षों तक के आईटीआर में घोषित औसत आय को सामान्यतः संदर्भ बिंदु के रूप में माना जाना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने दिल्ली सरकार के साथ टीबी मुक्त भारत अभियान और डेंगू की तैयारियों पर समीक्षा बैठक की। श्री नड्डा ने इस अभियान को गति देने के लिए जन भागीदारी बढ़ाने का आह्वान किया। श्री नड्डा ने कहा कि व्यापक जनसंचार सुनिश्चित करने के लिए अभियान से संबंधित सभी संचार सरल और आसानी से समझ में आने वाली भाषा में होना चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में निरंतर बदलाव में विशेषज्ञों की भागीदारी, संस्थागत सहयोग, संवादात्मक शिक्षण और समयानुकूल विषय वस्तु पर बल दिया है। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि 21वीं सदी में सुशासन के लिए ऐसे प्रशासकों की आवश्यकता है जो निरंतर सीखने, प्रौद्योगिकी, नवाचार और जन भागीदारी के युग में आगे बढ़ने में सक्षम हों। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची भारत की 3 दिन की यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंची। उनकी ये भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगी। ये शिखर सम्मेलन दोनों पक्षों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करने के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा। दोनों नेताओं के बीच वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जापान पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम के माध्यम से काम कर रहा है।

0: पूर्वोत्तर भारत में संपर्क और विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत और जापान मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों देश बुनियादी ढांचे, शहरी विकास, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र जापान की स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र की परिकल्पना में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि यह दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक सेतु का काम करता है। 2025 से अब तक जापान और पूर्वोत्तर राज्यों के बीच कई उच्च स्तरीय दौरे हुए। इसी वर्ष फरवरी में जापान के विदेश मामलों के राज्य मंत्री इवाओ होरी ने भारत का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने मेघालय और असम के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की। इस वर्ष अप्रैल में मेघालय के मुख्यमंत्री जापान गए थे। इस यात्रा के दौरान एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत अगले 5 वर्षों में मेघालय के 5,000 युवाओं को जापान में कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत और पाकिस्तान ने आज एक दूसरे की हिरासत में मौजूद सिविल कैदियों और मछुआरों की सूचियों का आदान प्रदान किया। भारत ने अपनी हिरासत में मौजूद 386 कैदियों और 53 मछुआरों की सूचियां साझा की। पाकिस्तान ने अपनी हिरासत में मौजूद 52 कैदियों और 198 मछुआरों की सूचियां साझा की। भारत ने 188 भारतीय नागरिकों की रिहाई और 13 लोगों तक कौंसलर पहुंच की मांग की। भारत ने पाकिस्तान के फर्रुखाबाद में 125 वर्ष पुराने पवित्र गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा साहिब को ध्वस्त किए जाने की कड़ी निंदा की है। भारत ने इसे अत्यंत निंदनीय और बर्बरता का कृत्य बताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों और उनके पूजा स्थलों को निशाना बनाने का सिलसिला लगातार जारी है। सरकार ने आज देश में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर शुरू करने के संबंध में मेटा को नोटिस जारी किया है। सूत्रों के अनुसार सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा को 3 दिनों के भीतर यूजर नेम फीचर के बारे में विस्तृत जानकारी देने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा है कि केंद्र सरकार राज्य में परिवहन ढांचे के विकास को विशेष महत्व दे रही है। आज नई दिल्ली में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात के दौरान राज्य की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। डॉ. साहा ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा और पूर्वोत्तर क्षेत्र को देश के व्यापक विकास ढांचे से जोड़कर सड़क संपर्क को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश दौरे के दूसरे दिन राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से व्यापक वित्तीय और संरचनात्मक सहायता प्रदान की जाएगी। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। 4 जुलाई तक तटीय कर्नाटक, गुजरात क्षेत्र, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तराखंड और विदर्भ में भी अगले 3 से 4 दिनों तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इस बीच मुंबई में कल से तेज वर्षा हो रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने 5 जुलाई तक कई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है।
2: बृहन्मुंबई महानगर पालिका के अनुसार आज सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच मुंबई के पूर्वी और पश्चिमी उपनगरों में 100 मिलीमीटर से अधिक वर्षा दर्ज की गई। मूसलाधार बारिश के कारण अंधेरी, दादर सहित कई निचले इलाकों में जलभराव हो गया, जिससे यातायात और जनजीवन प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने कल के लिए पालघर जिले में रेड अलर्ट जारी किया है और अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना जताई है। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंबई से शैलजा तिवले।
1: वस्तु और सेवा कर जीएसटी से सरकार को जून महीने में 1,94,812 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। ये पिछले वर्ष जून की तुलना में 13.9% अधिक है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
3: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 444 अंक बढ़कर 76,923 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 140 अंक बढ़त के साथ 24,006 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 57 पैसे कमजोर होकर 95 रुपए 24 पैसे पर बंद हुआ।

0: नई दिल्ली में आकाशवाणी के रंग भवन में आज फोटो गैलरी स्वर प्रेरणा वेथिका का अनावरण किया गया। पद्म विभूषण बांसुरी वादक पंडित हरि प्रसाद चौरसिया ने इसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने कहा कि आकाशवाणी ने भारत की समृद्ध संगीत विरासत को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
1: आकाशवाणी ने हमेशा से ही अपने कार्यक्रमों में संगीत की सभी विधाओं को स्थान दिया है और संगीत में रुचि रखने वाले कलाकारों को प्रोत्साहन दिया है और साथ ही श्रोताओं की पसंद का भी विशेष ध्यान रखा गया है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, कर्नाटक संगीत, सुगम संगीत, लोक संगीत, भक्ति संगीत, फिल्म संगीत, पाश्चात्य संगीत, रवींद्र संगीत, इस प्रकार अनेक विधाओं के संगीत को कोई सुनना चाहे तो आज भी उनके लिए आकाशवाणी सर्वश्रेष्ठ माध्यम है।
0: भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैच श्रृंखला का पहला मैच आज रात 10 बजे चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में होगा। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और DR कांगो आमने सामने होंगे। देर रात 1:30 बजे बेल्जियम का मुकाबला सेनेगल से होगा। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा कल से शुरू होगी। तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर पहुंच चुका है। तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल सुबह 4 बजे पहले जत्थे को रवाना करेंगे। 57 दिनों की यात्रा 3 जुलाई से नुनवान, पहलगाम और बालतल मार्गो से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम देश भर में लागू। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें अधिसूचित की। सर्वोच्च न्यायालय ने मोटर दुर्घटना मुआवजे के दावों में एकरूपता लाने के लिए पीड़ितों की आय का आकलन करने संबंधी दिशा निर्देश जारी किए। जापान की प्रधानमंत्री सनाई ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज रात चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा और फीफा फुटबॉल विश्व कप में राउंड ऑफ 32 में आज रात इंग्लैंड का मुकाबला DR कांगो से। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।